0: आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं आगे शेर पढ़ूंगा।
1: बिल्कुल नया कलाम आज ही मैंने लिखा और फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आज यहाँ से आगाज है। जरा दोनों हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह तो बात बने।

0: सुभान अल्लाह,
1: जिसकी तमन्ना है हाना है हानी कह के
0: सुभान अल्लाह।
1: इलाही इलाही इलाही इलाही इलाही इलाही इलाही
0: जिंदाबाद।